la tripulare tanu, edita sakala sansan. Kaushik suno, banda ehman, kutila kala vasa nijakula gala, tuma hata kahu jo chaha ubara, kahita taap bala rosho hamara. Sura samad karani karahi, kahina janava hi aap, nityaman rana payani, kayan karahi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुलहि प्रसंसि कालहु डरहि न रण रघुवंशि विप्रवंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल परस